0: अगर आपको शक है कि आपके पड़ोसी किसी मुश्किल में हैं, कोई चोर या डाकू इनके घर में घुस गया है या इनके घर का सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो गया है, तो फौरी तौर पर पुलिस को आगाह करें। आपके इस अमल से आपके पड़ोसी की जान या इनका साजो सामान बच सकता है। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
1: Prophet Muhammad, peace be upon him, said, Shaitan puts three knots at the back of the head of any of you if he's asleep. On every knot, he reads and exhales the following words. The night is long, so stay asleep. When one wakes up and remembers Allah, the first knot is undone. And when one performs ablution, the second knot is undone. And when one prays salah, the third knot is undone. From Sahih al-Bukhari.
2: Hello listeners, Aukash speaking, author and model from Cambridge. Hope you're enjoying your day and be ready to be inspired.

गीत गाते आबशार। ये वादियां ओ दरिया और कोहसार, यही तो है इंस्पायर एफएम की बहार।